0: लो यहाँ लगी तो पंजी ने तुमसे तेना मार तो मार न फिर मार मत सा तेना वो चांस मिना साने रंगा लोलू चिरे न किलू मारी ना है मनो न मत मारी ना
1: मनो न चिरे अफ़ा पुतौर चारा
0: ये न तौर चारा का Fa misin na wate tena mat mat na fima.
1: Iya tena matis. Ita nau rene fa nambarok tam nau rene tawolan sabatran changatau. Le ulam faruta nau chano tungatyo tesen napzan namfun.
0: Tena ti luzo kumar. Tena fin bezan fuksa.
1: Sa tum fangarto tawolan ti chano rene ti tena tsakam minsan. Sat rene arfen titra no te aiza arizan tsufat. Raza ya no te mba miuvar mtetra no ratio. Ndena tia olufa warina ndate. Mba miufa amsai.